0: मैंने मैं आया टिकट उतर करने के लिए अपने मैसेज कर लेती हूँ मैं गीते रिकमेंड की हमको अभी
1: जय मामा इन वो सुबह में सुबह उदयसन के लिए ना यशोद एंड दसोनी ये वाके में कोठा वेग में मेरा विश्वास दिन लखन हागन इन वो के लिए ना लोको बस इन फुल पड़ी बस वरुण धनुष कर अश्विन मिस जगत में हम मैं कुछ करने के लिए ना मैं है ना सिंधु